जी की फतेह। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल तख्त चवर दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान सत संगी जनों, आओ गुरु चरणा विच बैठ के आप जी अमृत बाणी दा रस पीना कीर्तन श्रवण करके अपने जीवन दियां घड़ियां नूं सफल कर रहे सी। सतगुरु दा शब्द पढ़िया जा रहा सी, साब बुद्ध दीजै जित विसरे नाहीं। हे सतगुरु मैनू एव जी मत बुद्ध दे जिस मत बुद्ध विचों मैनू परमात्मा दा नाम भुले ना। अज हाड़ दा महीना आरंभ होया है, केवल मैं दो पंक्तियां आरंभता ते अखीरती पढ़ो। शब्द महाराज ने उथे भी नाम दी कीती, गुरु अर्जुन साहब जी ने कहा आषाढ़ तपंदा तिस लगै हर ना हो ना जिन्ना पास, जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस। कहिंदे हाड़ दा महीना उन्हां लई तपश भरिया है जिन्हां ने परमात्मा दे नाम नूं भुला दिता है। ते अखीर ते जाके एक बचन वरतिया महाराज ने, उत्थे शब्द वेखो वरतिया, कहन लगे आषाढ़ सुहंदा तिस लगै। आरंभता विच क्या आषाढ़ तपंदा तिस लगै, जिन्हां नाम भुलाया उन्हां लई तपश भरिया है, वह बंदे अंतर आत्मे तो तपदे ने नाम तो बिना। ते अखीर ते क्या, कहिंदे आषाढ़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास, जिन्हां दे अंतर आत्मे परमात्मा दा नाम वस गया उन्हां लई महाराज कहन लगे बाहरी तौर ते भावें इह हाड़ तपदा है पर महाराज कहन लगे नाम जपन वालियां दे अंदर ठंडक है नाम दी बदौलत। तो आप जी गुरु चरणा विच बैठ के अमृत बाणी दा कीर्तन श्रवण करके अपने जीवन नूं सफल कर रहे हो। गुरमुखो जो लड़ी वार प्राचीन पंथ प्रकाश दी कथा आपां गुरु की असीस नाल विचारदे आं। कल रोज आपां विचारिया सी कि किवें बावर सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह नूं बेनती करदा है, महाराज मेरे ते कृपा करो मैनूं पातशाही बख्शो। पहलां महाराज ने उहदे मन दे कई तरह दे भरम वह दूर कर दिते। महाराज ने फिर उन्हूं कहा ऐ बावर तू ते काबुल तो तुरदा होया चितवदा हुंदा सी कि मैनू ए राज गद्दी मैनू ए हिंद दी पातशाही मेरा पैगंबर रसूल देगा, ते तू अपने पैगंबर तो क्यों नहीं ले लैंदा। उन्हें बचन वरते महाराज पैगंबर तक मेरी पहुंच कोई नहीं, वह ते बेअंत है कोहां दूर है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने कृपा की, कह लगे तेनू तेरे पैगंबर का मिलाप करवाने अपनी बख्शिश करके, ते ओ बावर नू पैगंबर का मिलाप करवाया मोहम्मद साहब पैगंबर का, पैगंबर नाल मिलाप होया। उथे कहिंदे ने इतिहास में जो पढ़िया है कि पैगंबर नू जाके पातशाही लई बेनती की, पैगंबर ने अगों कहा मेरे हाथ विच ਇਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ

0: छोले दादा करा मैं गुजारा,
1: ओ मेरा कारोबार गुरु जी,
0: छोले दादा करा मैं गुजारा,
1: ओ मेरा कारोबार गुरु जी,
0: जोलरी तुहाडे नाल मेरा
1: ओ कर लो।

0: गरीब सेवादार जी,
1: उदास टूटा मैं गरीब सेवादार जी,
0: पहचान खानदान दी
1: फरज विसार गुरु जी,
0: करो ना पहचान खानदान दी
1: फरज विसार गुरु जी,
0: मैं जो

0: याद गोद दी ना कर पड़ताल जी
1: मेल खावे ना साडा थोड़े नाल जी याद गोद दी ना कर पड़ताल जी
0: मेल खावे ना साडा थोड़े नाल जी याद गोद दी ना कर पड़ताल जी।

ये गुर ज्ञान बताए जन नानक बिन आपा जी न मिटन परम की काई बार पितरे को जान हो ए गुर ज्ञान बताई जन नानक बिन आपा जी न मिटना परम की काई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। बारह माह माज मोहल्ला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आषाढ़ तपंदा तिस लगा हर नाहो ना जिन्ना पासा जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आसा आषाढ़ तपंदा तिस लगै हर नाहो ना जिन्ना पासा जग जीवन भुख त्याग कै मानस संधि दुजे पाए भी गुचिया कल पई।

0: जिया बीजै सो लूनै, मते जो लिखिया सा रैन बियानी पचदानी और चली गई निराशा। जिनको साधु भेटिया सो दरगह होए खिलासा। कर की पापर भी अपनी ते दर्शन होए प्यासा। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदासा। आसार सुंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवासा। प्रतुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदासा। आसार सुंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवासा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी। सोट महला पांजे वाह, गुर का शब्द रखवारे, चौकी चो गिरद हमारे। राम नाम मन लागा, जम लजाय कर भागा। प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल। पूर्ण पुरख विधाता रहाओ, नानक प्रभ बनासी। ताकि सेवन बिरती जासी, आनंद करे तेरे दासा। जा पूर्ण हुई आसा, बिलावल महला पांजे वा। ताती वाव न लगाई, पार ब्रह्म शरण आई। ज्यों गिरद हमारे राम, कार दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया, जन बणत बनाई। राम नाम आओ खुद दियाई, कानी बलाई रहा। राख लिये तें रखन हार, सब व्याध मिटाई। कहो नानक किरपा भई, प्रभ भय सहाई। सलोक जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत। ना हो ना तू नह छुट है, निकट न जाइयो दूत। सलोक महला पांजेवा। मन में चित बो चित बनी, उदम करो उठ नीत। हर कीर्तन का आहरु, हर देहो नानक के मीत। सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला। इक ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीर्ता किया करते का हो जी चारो। तित कर गावो सोहेला, सेवर हो सिजनहारो। तुम गाव हो मेरे निरभउ का सोहेला, हो वारी जित सोहेला सदा सुख हुए रहाओ। नैत नैत जीअड़े समालियन, देखे गा दे वनहार। तेरे दाने कीमत ना पवे, तिस दाते कवन सुमार। संबत साहा लेके आ, मिलकर पावो तेल। देहो सजन असी सड़िया, ज्यों होवे साहिब स्यों मेल। कर कर एहो पहुचा, सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिया, नानक से देह आवन। रागा समहला पहला, छे कर छे गुर छे उपदेश। गुर गुर एको वेस अनेक, बाबा जय कर करते कीर्त होए। सो कर रख वडाई तोए रहाओ, विश्व चसिया घड़िया पैरा। तिती वारी माह हुआ, सूरज को रुत अनेको। नानक करते के केते वेस, रागत नासरी महला पहला। गगन में ताल रव चंद, दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। तूप मलयान लो पवन चवरू करे, सगल बोन

तुम्हें अपना बिरद रखाओ, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेल राखो राखना।

छंद। नमस्तल प्रणाम्य समस्तल प्रणाशे अगंजुल अनाम्य समस्तल निवासे नरकामंग विपूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणाशी सुधर्मंग विपूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणाशी करिमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजायब विपूते गजायब गनीमे हरियं करियं करिमल रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते स्वयं पव सुभंग सर्वदा सर्व

हो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है, आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय, जो सदा हमारे पच्छा सिरियस तुझु करी हो रक्षा, राख लिहु मुहि रखनहारी, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुमहु पुरी चतुर्दशकंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजु अवतरा, काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहि हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी हो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, सबकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बध कियो, घट घट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन की सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, जब करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपार, जब अकर्ख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह तर सब हूं, जिते बदन श्रेष्ठ सब तार, आपा अपनी बूझ उचार, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा, ताको कृपाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत, महादेव को कहत सदा सिव, निरंकार का चीनत नह पिव, आपा अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लख न जाय पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही पूपा, अंडज जीरज सीरज कीनी, उत्पुज खान बोहर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचम भव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अवरक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण कहता, जे अस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सवटारे, जो कल को एक बार तिहे है, ताके काल निकट नह है, रक्षा होय ताहे सब काल, दुष्ट अरिष्ट त्रय तत्काल, कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाह श्व सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें

0: जय मात पिता सुत मीत न पाही
1: मनोहा नाम तेरे संग सहाय
0: जय महाप्रयान दूत जम दल
1: केवल नाम संग तेरे
0: जय मुस्कुल हो वे अत पारी
1: को नाम खिन माहे उदारी
0: अनेक पुनः चरण करत नहीं तरे
1: को नाम कोट पाप पर
0: गुरुमुख नाम जप हो मन मेरी
1: नानक पावो सुख तले
0: सगल सृष्टि को राजा दुखिया लाख करोरी बंधन पर अनेक माया रंग तिख
1: ना
0: बुझावे जिह मार गे हो जात अकेला ऐसा नाम मन सदा त्याई है छूटत नहीं कोट लख बाही अनेक बिघन जह आये संघार अनेक जोन जन मैं मर जाम हो मैं लामल कब हो न तो वै ऐसा नाम जपहु मन रंग जिह मार के गने जा ही न कुसा जिह पैडे मह अंध गुबारा जहा पंथ तेरा को न सुनानु जह महाप्रयान तपत बहु काम जहा तिरखा मन तुझ आकर्ष
1: नानक हर हर अमृत वर्ष
0: भगत।

0: का विश्वास न हो।
1: जिसकी वस्तु तस आज्ञा रखे,
0: की आज्ञा माने मात्र,
1: उससे चौगुण करे निहाल।
0: नानक साहिब सदा दयाल,
1: अनेक पात माया की हित,
0: सर्वलोभ जाने
1: बिरख की छाया से और रंग लावे।
0: जोधी
1: सह सो चालन हार, बटाऊ से जो लावे नीर, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया, मिथ्या राज जोवन धन माल, मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा, मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, अस्त्र भगत साध की शरण, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या नेत्र पीखत।

0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान,
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाय अपमान,
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊंचा, ब्रह्म ज्ञानी से जान पाई, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया,
1: ब्रह्म ज्ञानी
0: सदा समदर्शी।

0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदाहार
1: ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग
1: ब्रह्म ज्ञानी के
0: नाम आधार
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत
1: ब्रह्म ज्ञानी अहम बोध जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बीता
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संगीत
0: ब्रह्म ज्ञानी के हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप
1: ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई
0: ब्रह्म

0: ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाय अदा अखियर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता
1: ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
0: ब्रह्म

0: कोट राजे रसपो
1: कई कोट पंखी सरपो पाए
0: कई कोट पाथर बिरख ने बिजाए
1: कई कोट पवन पानी बे संतर
0: कई कोट देश भूमंडल
1: कई कोट शशिर सूर नक्षत्र
0: कई कोट देव दान इंद्र सिंह
1: सगर समग्री अपने सूत।

कबू होए बह बड़ राजा कबू अब कीर्त में आवे जो प्रभु राखे तब ही रहे कबू होए पंडित करे बखियान कबू तट तीर्थ स्नान कबू कीट हस्त पतंग होए जिया नाना रूप जा स्वागी दिखावे जो तिस पावे सोई होई कबू साध संगत इहो पावे अंतर होए ज्ञान प्रगास मंत्र नाम रते इकरंग जो जल मह जल

0: दुख किनो सो अपने रंग
1: साते दू सब के संग
0: बुझे देखे करे विवेक मरे न बिन से आवे न जाई
1: नारे सादी रहा समाए
0: आप उपदेश समझे।

0: संत के दुखन ते मुख पवे,
1: संतन के दुखन काल जो लवे,
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाई,
1: संत के दुखन त्रिक जोन करमाई,
0: संतन के दुखन तृष्णा मह जले,
1: संत के दुखन सब को शरण,
0: संत के दुखन तेज सब जाई,
1: संत के दुखन नीच न जाई,
0: संत दुखी का थाओ को नाही,
1: ज्ञान संत पावे ता ओ भी गत पाई,
0: संत का निंदक महात ताई,
1: संत का निंदक खंडे का ना पाई।

0: कौन बस आई तेरे संग राम नाम जप हृदय माहे
1: नानक पासे ती कर जाए
0: जिस वखर को लैन तू आया
1: राम नाम संदन कर पाए।

0: ऊपर जाइए करवाए,
1: साथ सेवा बड़ भागी पाइए,
0: संग हर कीर्तन गाइए,
1: अनेक विघ्न ते साधु राखे,
0: हर गुण गाए अमृत राचा,
1: ओढ़ कही संत है दर आया,
0: सार सुख नानक ते पाया,
1: मृतक को जीवा लनहार,
0: भूखे को देवता दार,
1: सर्व निधान जा की दृष्टि माहे,
0: प्रभु लेखे का लहना बाहे,
1: सब कुछ तिसका ओह करणे जोग,
0: जिसमें दूसर हुआ न होग,
1: जप जन सदा सदा जन रैणी,
0: साते उच निर्मल
1: कर कृपा जिसको नाम दिया,
0: नानक सोजल निर्मल दिया,
1: जाके मन गुर की प्रतीत,
0: जन आवे हर प्रभु जी,
1: भगत भगत सुनिए तेहो।

0: रूप सत जा का सत स्थान
1: सत केवल प्रधान
0: करतूत सत सत जा की बाणी
1: सत पुरक्षा माहे
0: सत कर्म जा की रचना सत
1: मूल सत सत
0: सत करणी निर्मल निर्मली
1: जिसे बुझाए तिसे सापनी
0: सत नाम प्रभु का सुखदाई
1: सत नानक करते पाई
0: सत भजन साधु उपदेश
1: सत जा जा के हृदय प्रवेश
0: सत निरत बुझे जे कोई
1: नाम जपता की गत होए
0: आप सत किया सब सत
1: आपे जाने अपनी मित गत
0: जिसकी सृष्ट सो करणे हार
1: और ना बूझ करत विचार
0: करते की मित ना जाने किया
1: नानक ज्योतिष पावे सो वरदिया
0: जिस मन विषम पहे विस्माद
1: जिन बुझे आते सास
0: सब के रंग रास जिन रहे
1: गुर के वचन पदार्थ लय
0: ओदा ते दुख काटन हार
1: जाके संग तरे संसार
0: जन का सेवक सो वड भागी।

0: काहे सोच करह रे प्राणी।
1: जब नानक प्रभ लख बनाणी,
0: बारंबार बार प्रभ जपिए,
1: नियम रहते मन तंत्र भिए,
0: नाम रतन जन गुरमुख पाया,
1: जिसका स्वर नाही दिसता,
0: नाम तन नामो रूप रंग,
1: नामो सुखर नाम का सांग,
0: नाम रस जो जंत्र पताने,
1: मानता नामे नाम समाने,
0: उठत बैठत सोबत नाम,
1: कौन नानक जन के सरकार,
0: बोलो जस जिस

0: काहु बोल न पहुँचत प्राणी निराहार निर्वैर सुखदाई अनेक भगत बंधन नित कर है सदबलिहारी सदगुर अपने
1: जिस पर साध ऐसा
0: इहो हर्ष पावे जन कोई।

0: अवर पाव समीत विसार हो
1: जनक अमृत में अर्थ
0: करण कारण सो प्रभु समरथ
1: कर कहो नाम हरवत
0: इहो तन संच हो बहु भगवंत एक आस रख हो मन माही
1: सर्व रोग नानक मिट जाए
0: जिस तन को चार कुंट उठता वह
1: तन हर सेवा ते पावे
0: जिस सुख को नित बाचे मीत
1: सो सुख साधु संग प्रीत
0: जिस सुबह को करह पली करनी
1: सासो बापज हर की सामी
0: अनेको पावी रोग न जाए
1: रोग मिटे हर अब खजलाए
0: सर्व निधान में हर नाम निधान।

जिस भावत सल मिलाई मन अंतर विश्वास कर मनिया जन लागा हर एक नाई सेवक को सेवा बन आई इससे ऊपर नहीं विचार बंधन तोर पहे निर्वैर यह लोग सुखिए पर लोग सुहेले।

0: मधुपुरी अमृत जा की दृष्ट
1: आसन भेद
0: चरण कमल जा के अनूप
1: दर्शन सुंदर
0: धन सेवा सेवक परवान
1: अंतर जामे बरख प्रदान
0: जिस मन बसे सो होत ने।

कर शांत सुख मन आय वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन कौसे नाम हर कै लागे आनंद सुनो।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवी प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौनिद आवै ताए सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ दर्शन दीदार उपदेश जी का त्यांतर के बोलो जी। पांच प्यारे चार साहिब जादे चाली मुखते समूह संगतां हठियां जपियां तपियां

ब्रह्म विवेक है, जुगो जुग अटल, छबर छतर तखत दे मालक, लोक अते परलोक सवार देन वाले सतगुरु दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जिंदगी दे कुछ पल सफल कर रही गुरु निवाजी साध संगत जीओ, प्यार अदब सहित गुरफते प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़े ही प्यार नाल गुरु सवारियां पासों गुरु रामदास पातशाह जी दे दर करदे कीर्तनीए भाई साहब भाई हरपाल सिंह जी कीर्तन सरवण करवा के गए। जेड़े सुरती करके हाजिर सी उन्होंने आनंद माणिया, शब्द गायन कर रहे सी, तू प्रभ दाता दान मत पूरा, तेरे नाल दा दाता दुनिया ते है ही नहीं कोई, जागत भिखारी फिरता है सब को दाता राम। कई दाते बन के बैठते उन्होंने दान देना नहीं आता, किनू देना किन्ना देना, तू दाता भी है ते तेनू दान देना भी आता भी किनू किन्ना क देना। जगत भिखारी फिरता है सब को दाता राम, तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो, असी तेरे दर दे मंगते हाँ। ददा दाता एक है सब को देवन हार, दें दे तोट ना आवी अगणत भरे भंडार, सारियां दा रिजक दाता मालिक वाहिगुरु है, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। वड्डे वड्डे सूरमे जोधे उहदे दर दे भिखारी ने पातशाह जी कहिंदे, वीर अपार बड़े बरियार विचार है सार की धार पछैया, तोरत देस मिलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया, गाड़े गड़ाण के तोड़नहार सो बातन ही चक चार लवैया, साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया। सारे उहदे दर दे भिखारी सवाली ने ते सारयां नूं दातां देण वाला ओह मालिक वाहिगुरु है। ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ

काहे रे मन चित्त वह उद्दम जा आहर हर जियो परया सैल पथन मैं जंदो पाए तागा रिज को आगे कर धरिया मेरे माधो जी सतसंग मिले सो तरिया गुरप्रसाद परबद पाया सूके काट हरिया रहा जन पिता लो सत बनता कोई ना किसकी धरिया से सड़े जिस बाहे ठाकुरा काहे मन बो करिया उड़े उड़िया वैसा कोसा जिस पाचे बचरे छरिया तिन कवन करावै कवन चुगावै मन मैं सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिद्धाना ठाकुर करता धरिया जन नानक बल्ब सद बजाइया तेरा अंतना पारा भरिया राग आसा महला चौथा

कहो नानक मनीच करम्मा, शरण परे की राखो शर्मा। कभी बाज बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ रचा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरण मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतबारा, हमरे दुष्सभ तू का बहो। आप हाथ मुहि बचा बहो, सुखी बसे मोर परवारा। सेवक से सबै करता, मोर चानिज कर दे करिया। सब बैरन को आसंगरिया, पूर्ण होए हमारी आशा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें चाड़ कोई अवन ध्यान। जो बचाओ सो तुम ते पाओ, शिव सिख हमारे तारी है। चुन चुन सुतन मारे मारी है, आ भाव दे मुझे बरिया। मन का त्रास निवरिया, हुजो सदा मारे बच्चा। श्री अस तुझ जो करियो रचा, राख लियो मोरा कन्हारे। साहिब संत साहिब प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता। तुम परि चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा अवतरा। काल पाए सिज्जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु बकासा। सगल का किया तमाचा, जमन का जोगी शिव किया। वेदराज ब्रह्मा ज्योतिया, जमन का सलो स्वारा। नमस्कार है ताई हमारा, जम का सजत मनायो। देव दै जचन बजायो, आदि अंत एक अवतारा। सोई गुरु समझियो हो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी। सगल प्रजाजन आव सवारी, शिवकन को सबगुण सगुदियो। सतन को पल मोहम्मद किया, घट करके अंतर की जानता। भले बुरे की पीर पहचानता, चिंटी दे कुंज रसूला। सब कृपा दिश कर भूला, चंदन दुपाए ते दुखी। सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की भी पछाना। घट घट के पटपट की जाना, जबंद कर करा करता रहा। प्रजा तत्व तब दे अपारा,

आप अपनी बूझ उचारा, तुम सभी तेरे निरालम, जानत वेद भेद हरियालम, दणका निर्भका निर्लंब, आद अनिल अनाद सांब, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताको कृपाहन अनुमानत, मां मूड कछ भेद न जानता, मां देखो कै सदा शिव, निरंकार का चिंतन है पेवा, आप अपनी बुद्धिया जेती, वर्णन भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लखन जय पसारा, कि सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनुस्वरूपा, रंग पयो राव कई फूपा, अंडा जेरा सिद्ध जकीनी, उत्बज खान बहुरच देनी, कौं भू राजा वह बैठा, कौं सिमट पयो शंकर इकाठा, सिगरी सिष्ट दिखाया चंपव, आद जुगा सरूस अंपव, अबरचा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संग्रो, दुष्ट जिते उठो उत्पाता, सगल मलेश करो लनकाता, जी असतुता सन्नी परे, तिनके दुष्ट दुख्त हवे मरे, भुख जन पग परे त्यारे, तिनके तुम संकट सब डारे, जो कल को एक बात त्याय है, ताके का निर्णय है, रचा हुए ताए सब काला, दुष्ट रिटरे तत्काला, कृपा दिष्ट तन जाय निहार हो, ताके ताव तनक मोहर हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शास सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल पाते ताई उबारा, जिन नाम त्यारो कहा, दर्द दुष्ट दो तेरा, खड़क के तो मैं शरण त्यारी, आब हाद लियो बार, सर्व ठोर मोहो सहाई, दुष्ट दोग ते लियो बचाई, सवैया पाए गए जब दे तुमरे, तब दे कुआ तरे नियानियो, राम रही पुराण कुरान, अनेक है मत एक न मान्यो, सिंब सातल भेद सब है, वो भेद गए हम एक न जानियो, श्री स्पान कृपा तुम्हरी कारण,

राम कली महल्ला तीजा नंद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद नंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तैं पाया सहज से ती मनवजियां वादाइया, राग रतन परवार पईया सबंद गावन आईया, सबदों ते गाव हो हरि के रा, मन जिनी बसाया कह नानक नंद होवा, सतगुरु मैं पाया इमन मेरिया, तू सदा रो हर नाले, हर ना रो तू मन मेरे, दू सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा, काज सब सवारना सबना गला सम्रत स्वामी, सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले, साचे साहिबां क्या नहीं कर तेरा, करता तेरा सब विच है, जिस दे सो पावे सदा सिसला तेरी, ना मन वसावे नाम जिन के मन वसिया, बाजे शब्द कनेरे कहना सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइया कर सांत सुखमन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा गुरबान किता गुरबिट हो, जिस दिया हिबड़ी आईया कह नान सुनो संत हो, सब थरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तिद घर सभागै, घर सभागै शब्द वाजे, कला जितकर तारिया पंच दूत दास कीते, काल कंटक मारिया तुर करम पाया तो जिन को, से नाम हर कह लागे कह नानक तैं सुख हुआ, तित कर

जह जय पेको तह अजूरा, दूर कतहु न जाय। रब रया सर बतन मैं, मन सदा तियाय। जह जय पेखो तह अजूरा, दूर कतो न जाय। रब रया सरबतन मैं, मन सदा तियाय। ईत ऊत नहीं विछड़ै, सो संगी गणिया। बिनस जाय जो निमक मह, सो अल्प सुख बणिया। रहा प्रतपाले अप्याओं दे,

मेरा प्रभु सोई अचल छेद पार प्रभ ऊंचा जाका रूप जप जप कर है आनंद जान अचर्ज अनूप सामत देव दयाल प्रभ जे तुम्हें अरादा नानक मंगे दान प्रभ रेन पग सादा सामत देव दयाल प्रभ जित तुम है अरादा

परम सत्कार जो गुरु रूप गुरु खालसा सात संग जी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो आओ हफ्तावारी मंगलवार शाम नो जो सिमरन दा समा लिखा गया है सारे रल मिल के आप हाजरियां भरीए। सतगुरां ने फरमान किया है सत संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम वखाणी है। एको नाम हुक्म है